Puis FBA's scorecard video sur Nino and Sarah Kari Kram, allez à mi tons sur ta, you sami, ramasi you kema, da sami hammer sangaile, ad basakalagi, choda minute, baki rekusa. अब शिव ने मीठा मेरे की संगीत विभिन्न जानकारी को साथ में समय में मेरे से गरी अपकमिंग इवेंट्स को बारे में अपनी की जानकारी तब को मासा में राखी हालाऊ रब बने पेंशन पट का योजे गुरुंग संस्कार संस्कृति आधारित चलचित्र दिखाई गई रखे जो तब जान सकून भोलि को दिन 19 सेप्टेम्बर में स्थान सेंट माइकल्स चर्च हल ईस्ट विकम लेन में होना गई रेलुकी 5 बजेदी होने र टिकट पाने को लगी स्थान मिल्सा स्टोर प्लमस्टेड में तब कि सकूने रबने कार्यक्रम आउनुस हामी फेरि पनि अगाडि बढ्ने नै छौँ तपाईँको माझ मार्केट मिठो गीतको साथमा भागी जाने सल्लाह सुनिता थेगिम र नोगिन हाङसारू